0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, CIDCO N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचवू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: पर होता।
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।
1: मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: 90s की बातें वितार जी अदनान ऑन MGM 90.8 FM। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आरजी अदनान आपके साथ है 90s वाले शो में। और आज है संडे फंडे, और संडे फंडे के दिन ना तो हम आपको लेकर जाते हैं 90s की बेहतरीन सी यादों में, और वो लम्हे हम फिर से वापस दोहराने की कोशिश करते हैं। तो आज के शो में 90s वाली बहुत सारी बातें होगी। उसके पहले आप उठिएगा यार, कितना सोगे? आई नो बहुत थक चुके होगे आप। संडे के दिन ना तो नींद पूरी करने का आपका प्लान होता है, लेकिन अचानक से मम्मी अपने रूम में आ जाती है और फैन बंद कर देती है, फिर हमें ऐसे मजबूरी में उठना पड़ता है और संडे सर्वाइव करना पड़ता है। बट सर्वाइव मत कीजिएगा, खूबसूरत तरीके से उसे एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि छुट्टी आती है भाई हमें अपना टाइम देने के लिए। अपना टाइम आएगा जो कहते हैं ना, वो शायद से संडे ही होता है जिसमें हम अपने लिए थोड़ा बहुत क्यों ना हो लेकिन जी लेते हैं। ना काम का प्रेशर होता है, ना किसी की किचकिच होती है, बस अपने हिसाब से अपना दिन गुजारते हैं। सो यही दिन को और बेहतरीन तरीके से गुजारिएगा, और हैप्पी संडे कहकर आज के शो का आगाज करते हैं। और भी बहुत सारी बातें होगी 90s वाले शो में, लेकिन उसके पहले कुछ फिल्म की बात करते हैं जो कि आज आप देख सकते हो अपने थिएटर में। कौन कौन सी फिल्में हैं बताऊंगा मैं आपको कुछ ही देर में, स्टे ट्यून्ड।
1: वो बातें 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
0: 90s की बातें विद आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस

0: आज के जमाने में एक टैप पर व्हाट्सएप स्टिकर भेजना सबसे आसान है, लेकिन 90s में अपने इमोशंस भेजने का असली तरीका था एक छोटा सा ग्रीटिंग कार्ड। आरजे अदनान आपके साथ है 90s वाले शो में।
1: वो बातें 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
2: 90s की बातें विद आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM।
0: याद है आपको कार्ड के अंदर लिखी वो 2-3 लाइन से ज्यादा वैल्यू होती थी उस हैंडराइटिंग की जो अंदर लिखी होती थी, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, हैप्पी बर्थडे मेरे दोस्त, या फिर आई लव यू, या तो फिर आई एम सो सॉरी। ये लिखने के बाद ना तो हम 10 बार सोचते थे कि यार सामने वाले को ये पसंद तो आएगा ना। आज भी अगर पुराना बॉक्स खोला तो देखा कि वो रंग बिरंगी ग्रीटिंग कार्ड दिख जाते हैं और साथ में वो पुरानी मुस्कान भी वापस आ ही जाती है। क्या आपके पास भी ऐसा कोई पुराना ग्रीटिंग कार्ड है तो संभाल के रखिएगा उसे, क्योंकि वो बहुत प्यारी याद है हमारी 90s की। तो आज अपने इस 90s वाले शो में बात करते हैं 90s के उन ग्रीटिंग कार्ड्स की मेमोरीज की, जिन्होंने अपनी 90s का जो दौर था ना बहुत ही खुशनुमा बनाया था। तो 90s वाले शो में आज एक 90s के ग्रीटिंग कार्ड की बात करेंगे। आई होप कि इसके बाद ना तो आपको भी आपका 90s का जमाना याद आ ही जाएगा। इसके पहले हम एंजॉय करते हैं 90s वाला बेहतरीन सा गाना, स्टे ट्यून।
1: वो बातें 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
2: 90s की बातें विद आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांचे आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: पे मॉल जाने का क्रेज अब है, लेकिन 90s में ना तो एक जगह थी जो सबसे बेहतरीन लगती थी, वो है आर्काइव्स गैलरी, यानी कि जहाँ पर ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह मिला करते थे। आरजी अदनान आपके साथ है 90s वाले शो में।
1: वो बातें 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
2: 90s की बातें विद आरजी अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM।
0: रंग बिरंगी ग्रीटिंग कार्ड्स, टेडी बियर, स्मॉल की चेन, बस वही हमारी दुनिया होती थी। वहाँ खड़े होकर कार्ड खोल खोल के पढ़ना, फिर सोचना ये दोस्त के लिए है या क्रश के लिए। और जो कार्ड म्यूजिक वाले होते थे, वाह, जब खोलते हैं छोटी सी आवाज आती थी, हैप्पी बर्थडे टू यू, बस दिल गार्डन गार्डन हो ही जाता था। क्या आपने कभी ऐसे किसी शॉप पर जाकर सीक्रेटली किसी के लिए कार्ड खरीदा है या किसी को दिया है? शायद वही आपका पहला लव लेटर भी था, क्योंकि उस कार्ड के अंदर भले दो चार लाइन लिखी होती थी, लेकिन वो देने में बहुत हिम्मत लगती थी और सबसे ज्यादा मेहनत लगती थी उस कार्ड को चूज करने के लिए, कि यार कौन सा ले कौन सा ना ले, और उस शख्स को पसंद आएगा या नहीं आएगा, ऐसे ढेर सारे सवालात मन में ऐसे खड़े होते थे। सो ये तो एक 90s की प्यारी सी याद है। और भी अपनी 90s के ग्रीटिंग कार्ड्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आजकल मिलना पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल हो चुके हैं। सो कुछ देर के बाद एक बढ़िया सा किस्सा आपको सुनाऊंगा, स्टे
1: ट्यून्ड। 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
2: 90s की बातें विद आरजी अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM।

0: व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेज एक सेकंड में आता है, लेकिन 90s में जो अपने दिल से लिखा गया ग्रीटिंग कार्ड मैसेज होता था ना, उसकी बात ही अलग थी। आरजे अदनान आपके साथ है 90s वाले शो में।
1: वो बातें 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
2: 90s की बातें विद आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM।
0: डियर एक्स वाई जेड, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, कभी मुझे भूलना मत, या फिर जब भी तुम उदास हो ये कार्ड देख लेना। ये लाइंस ना तो लिखते वक्त हम अपने पूरे दिल से लिखते थे और पूरा दिल निकाल कर उस ग्रीटिंग कार्ड पर रख देते थे। और मजा तब आता था जब दोस्त लोग एक दूसरे के कार्ड्स में फनी डूडल्स बना देते थे, यानी कि कार्टून स्माइली हर्ट या फिर कुछ अजीब गरीब फेसेस होते थे, और उसके अंदर अगर कोई ब्लैक एंड व्हाइट फोटो चिपकाई हुई हो ना तो यार सोने पे सुहागा हो ही जाता था, और वो हम संभाल कर रखते थे। आज भी जरा देखिएगा वो पुरानी अलमारी में या किसी बक्से के अंदर कोई ना कोई ग्रीटिंग कार्ड आपको मिल ही जाएगा, और वो देखते ही ना तो आप 90s वाले दौर में चले जाओगे और किसी ना किसी की यादों में खो ही जाओगे। ग्रीटिंग कार्ड के अंदर ना तो लिखा हुआ एक छोटा सा मैसेज भी एक ट्रिजर बन जाता था, जो आज भी पढ़ लो तो आंखों के सामने वही दोस्त वही फीलिंग आ ही जाती है। भले आज हम व्हाट्सएप पर कितने भी बेहतरीन से स्टिकर्स भेज दे, बट किसी को ग्रीटिंग देने का मतलब बहुत खास होता था। तो यही खास चीजें आपने भी की होगी ना, तो बताइए मुझे DM कीजिए इंस्टा पर आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर। और बाकी तो 90s वाले शो में 90s की यादों में खो जाइएगा मेरे यानी कि आरजे अदनान के साथ।
1: वो बातें 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
2: 90s की बातें विद आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांचे आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: बर्थडे, न्यू ईयर, फ्रेंडशिप डे, 90s मेरा तो हर ओकेजन एक स्पेशल होता था और एक स्पेशल उसके लिए ग्रीटिंग कार्ड होता ही था। आरजे अदनान आपके साथ है 90s वाले शो में।
1: वो बातें 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
2: 90s की बातें विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
0: 90s में ना तो हर फेस्टिवल और हर याद को संभालने का सिर्फ एक ही जरिया था, एक ग्रीटिंग कार्ड। न्यू ईयर के दिन एक बंडल कार्ड्स आते थे घर में, अपने रिलेटिव्स से लेकर कॉलोनी के दोस्त तक सब एक दूसरे को कार्ड्स भेजते थे, और वो छोटे छोटे फ्रेंडशिप डे कार्ड जिसमें ना तो दोस्ती पर क्यूट शायरी लिखी होती थी, बस वही होते थे अपनी फीलिंग्स असली, जो सर्टिफिकेट ऑफ फ्रेंडशिप होती थी। या तो फिर त्योहारों के वक्त ना तो कुछ विश करने के लिए हम किसी न किसी को ग्रीटिंग कार्ड देते ही थे। आज भले हम व्हाट्सएप पर ना तो फॉरवर्डेड वाले मैसेज एक दूसरे को सेंड करते थे, लेकिन 90s के दौर में ना तो ग्रीटिंग कार्ड लेकर आना, उसके ऊपर अपने हाथ से किसी के लिए मैसेज लिखना, वो बहुत प्यारी फीलिंग थी यार। क्या आपको याद है एक ही दोस्त को एक ही दिन 4-5 कार्ड देने का फैशन होता था, जितने ज्यादा कार्ड उतनी गहरी दोस्ती, ऐसा माना जाता था 90s के दौर में। खैर ये 90s के दौर वाला जमाना हम और भी याद करेंगे कुछ देर के बाद, तब तक के लिए आप भी मुझे बताइएगा कि आपके 90s के दौर की कुछ ग्रीटिंग कार्ड वाली प्यारी सी मेमोरीज क्या है। डीएम की जगह इंस्टा पर आरजे अदनान, इसी इंस्टा पेज पर।
1: वो बातें 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
2: 90s की बातें विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: हो या दिल का रिश्ता, 90s में ना तो अपनी बात कहने का सबसे सेफ और प्यारा तरीका होता था एक ग्रीटिंग कार्ड। आरजी अदनान आपके साथ है 90s वाले शो में।
1: वो बातें 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
2: 90s की बातें विद आरजी अदनान ऑन MGM 90.8 FM।
0: बिना बोले अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने का जरिया ग्रीटिंग कार्ड। शायद इसीलिए जब हमें अपने क्रश को कुछ कहना होता था तो सीधा नहीं बोलते थे, एक कार्ड देते थे। वो कार्ड जो खोलकर पढ़ता था तो दिल की धड़कनें तेज हो ही जाती थी और उसके बाद आती थी वो छोटी सी मुस्कान जो सारी मेहनत सफल बना देती थी। ग्रीटिंग कार्ड सिर्फ कागज नहीं थे, वो हमारी इमोशंस की लैंग्वेज थी। शायद इसीलिए 90s के कार्ड्स ना आज भी सबसे ज्यादा यादगार है। सो एक प्यारा सा मैसेज हमारे पास आया है, हमारे लिसनर्स ने भेजा है उनकी 90s की यादों के बारे में, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। बहुत ही बेहतरीन उन्होंने याद अपना हमारे साथ शेयर की है, क्या है पता चलेगा कुछ ही देर के बाद। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: वो बातें 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
2: 90s की बातें विद आरजी अदनान ऑन MGM 90.8 FM।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचवू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9।